सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिना ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहंदे ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर, उन्हां दे चरणां ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आखिया

दिना वेची सिखा ने शंकरगढ़ मिचनी बालासार ते पिशौर दे किलिया नू जित लिया। सिख राज दिया हद्दा काबल वालू वदन लगिया। चार चुफेरे सरदार हरी सिंह नलुए दी बहादुरी दिया तुम्मा पै गईया। नव्या किलिया नू जित पुराणिया दी मुरम्मत कराई। पठाणा विच हलचल मच गई। ते फिर एक रोज सरदार हरी सिंह ने हल्ला बोल दर्रा खैबर दे बूहे जमरौद दे किले उत्ते केसरी झंडा जा चुलाया।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। कावल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया,

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाणा नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाल पै गया।
1: हुण महासिंह अगे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाल पूरना, ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारां बरछियां विच्चों मौत दे चंगियारे निकले, लोथां नूं लिताड़ दे सिंघां दे घोड़े अगे वधण लगे, मनुखी सिर मतीरियां वांग पैरां विच रुलण लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नूं इउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंच दिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तोला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ होते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछो घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

जो पति ने सचियां गल्लां कहियां, जो परम पिता परमात्मा दा हुक्म उनू जो ज्ञान विच आया होया सी रोज दसदा है, पर ए सोच दी है तेरे नाल मखौल पिया करदा है, एवें हासा करदा है, इन्हां सचियां गल्लां नू ओ हासा करके जानदी है। पर एक दिन उदों पता लगा

कोई रोक नहीं सकता। जिन्हां ते माण करदा है भरा भाई रिश्तेदार दोस्त मित्र एथों तक के सब तो नजदीकी रिश्ता है इस्त्री दा, वो भी साथ छड़ जांदी है। सारे कट्ठे होके फिर विबान दे उत्ते रख के बन के इसनू चार बंदे अपने मोढ़ियां ते चुक के तुर पैंदे ने। जेड़े इसनू मेरा मेरा करदे सन ओही हुण इसनू अगन भेट करन वास्ते ओही इसदा अंतम संस्कार करन वास्ते तुर पैंदे ने। ऐसी है ए दुनिया, ऐसा है ए संसार। हजूर गुरबाणी भी सानू उपदेश फरमा

जे हुकम आ गया उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा, उसनु कोई मेट नहीं सकदा। तो शेख फरीद जी, असा माया मोह दे जंजाल विच फसे हुए मनुखा नु एक जीवन दी सच्ची गल दसदे ने कि ए जीवन नाशवंत है। जे कुछ सच्चा है तां वाहिगुरु दा परम पवित्र नाम है, और सच्चे अमल चंगे अमल कीते हुए ही दरगाह दे विच कम आउणगे। कहंदे ने फरीद जी,

हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

हुक्म दिता जालम ने एदे हेठा अग बालो। लकड़ा लिया कि अग बाली गई, उत्तों जेठ दी तपदी होई ए गर्मी दी रुत। ऐसे हाल विच आखे आ गया गुरु अर्जन पातशाह जी नू, आप इस तवी दे उत्ते बैठो, असा वेखना है कि तुहाडे अंदर कितनी क शीतलता है। तुसी जो कहंदे हो कि मैनू कोई तपा नहीं सकदा, कोई जला नहीं सकदा, असा वेखना है शीतलता कितनी है तुहाडे अंदर। धन गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुराए, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल के आप तवी दे उत्ते चौंकड़ा ला लिया, चौंकड़ा ला लिया इस तवी दे उत्ते और कह

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उना दा सहम मैनू हुन सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे कोलों।

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेंट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबरां नूं अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे।

बाबा फरीद जी सूफी फकीर जिन्हां दी बाणी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने दर्ज कीती है, कहिंदे ने जिन्हां नूं अपनियां वडियाईयां दा कोई बंदा नेक काम करे ओदी संसार वडियाई करदा, कोई भला काम करे ओदी वडियाई करदा, ते जे अपनियां वडियाईयां वल वेख के ओ मान विच आ जावे तां साहिब सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी कहिंदी है भई ओ जिवें मूले धार मीह पैंदा होवे ता नीवे थां तां नकानक भर जांदे ने, उच्चे थां सुके दे सुके ही रह जांदे ने। एदा वडियाईयां करन वाला बंदा रब दियां बख्शां ते रहमतां तों एदा वांझा रह जांदा जिवें ओ उच्चे टिब्बे रह जांदे ने।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरुषां ने गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नू नीयां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना हुई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए, ओ जलाद जिड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाने दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दिता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर हमला

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुलमी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा।